तेयाता तवा छोता सोवाने हके विनष्टेयाता न एता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतो